ना शादी, ना दोस्ती, ना इश्क, ना मोहब्बत, नोप नोप। दिल का खेल बताइए, दिल मत दीजिए। हमदर्द बेचते हैं, खरीद

वारिस साहब को क्या बता दे, उन्हें कोई भी थप्पड़ मार दे और वो चुपचाप सह ले? नो, वी विल नॉट टॉलरेट एनी नॉनसेंस।